आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, एक नागली जंजीरियां फिरी चढ़े विसियार, आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार, नान करना जिनकी आप फिर से ही करनी सार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप

0: के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ज्ञान अमृत

0: कोशिश करन तो बाद भी जे असफल हो जावो तां भी उस व्यक्ति तो बेहतर हो जिसनूं बिना कोशिश सफलता मिली होवे।
1: एसी ज्ञान अमृत। आओ हुण सर्वन करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

प्रार्थना करनी है, परमात्मा दा नाम लेना है, तो सच्चे दिलों ही लेना चाहिदा है। हर काम नूं छड़ के सिर्फ उस नाम सच नाल।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित

यस सी दिने 11 बजे समाचार होंगे हिंदी विच ते 11:05 ते व्हाट्सएप पर धरत प्रोग्राम होएगा पंजाबी गीतन दा तमक जलंधर पेंदे दिने 12:05 ते समा रहेगा प्रोग्राम वस्ते वेड़े दा अज इस विच रेडियो डॉक्टर तहत पीलिया कारण ते इलाज इस विषय ते जानकारी देंगे डॉक्टर अमित सहगल नाटक अंदाज विच कहानी सुनोगे नव उसारी दिन 1:10 ते प्रादेशिक खबर होंगे ते 1:15 ते प्रोग्राम

0: ते इलाज इस विषय ते जानकारी देंगे डॉक्टर अमित सहगल। नाटक अंदाज विच कहानी सुनोगे नव उसारी। दिन 1:10 ते प्रादेशिक खबर होणगिया ते 1:15 ते प्रोग्राम फौजी वीरा लई। ये प्रोग्राम जारी रहेगा दिने 2:15 तक ते इस दौरान तुसी 1:40 ते खबर सुनोगे पंजाबी विच ते 1:50 ते उर्दू खबर होणगिया। बाद दोपहर 2:30 रंगली धरती साढ़े अज के कलाकार लखमीर सिंह मस कविशर ते साथी इन्हों की गाई हुई कविश्री सुनवाई जाएगी दिने 2:30 रंगली धरती तहत। शाम 4:00 मुख खबर तो बाद पंजाबी फिल्मों तो गीत सुनवाए जाएंगे। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण शामी 4:30 तो शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरबाणी विचार प्रोग्राम। शाम 6:20 ते प्रादेशिक खबर होंगिया। देहाती प्रोग्राम का समा रहेगा शाम 6:30 जिस विच काम दियां गल्लां होंगिया बकरियां पालना इस विषय ते जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह। इस अलावा गीत संगीत कल का प्रोग्राम ते मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। शाम 7:00 पंजाबी खबर होंगिया ते 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो तुसी रोज़ाना विशेष प्रोग्राम सुन रहे हो और अज का विषय होगा इस विच विरासत। रात 7:45 समाचार दर्शन ते रात 8:00 समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। रात 9:15 ते स्पॉटलाइट रात 7:30 कंट्री वाइड 9:45 इनसाइट्स ए प्रोग्राम दिल्ली केंद्र तो होंगे। रात 10:00 मुख खबर होणगियां ते सबाद होएगा प्रोग्राम सुर साधना। अज दे कलाकार पंडित निखिल बैनर्जी इन्हां दा सितार वादन होएगा राग चंद्र कौंस ते रात 10:30 समा रहेगा प्रोग्राम सरगम दा। परिचय अंतर्गत ए सन अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम। आकाशवाणी दा यह है जलंधर केंद्र। 6:55 होए ने सुनते हैं समाचार संस्कृत विच।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागीराष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः

0: उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। अज श्री गुरु अर्जन देव जी दा शहीदी पुरब है ते संबंध विच आओ सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण।

उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीट तुहारो कियो। रबी रजा नू रबी पाणे नू मनन वाले ए इलाही बोल, बाणी के बोहित शांति दे पुंज, शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारे गए। वैसाख वदी सतवी संवत 1620 बिक्रमी नू श्री गोइंदवाल साहिब विखे पिता साहिब श्री गुरु रामदास जी दे गृह विखे माता पानी जी दी कुखों अवतार तारण वाले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी प्रतख हर सन। आप जी दी उस्तत विच पट मथुरा जी ने उचारिया, पन मथुरा मूरत सदा थिर, लाए चित सनमुख रहो। कलजुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल श्रेष्ठ लगबित रहो। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नू ओ महान सरोत मंदे ने जिन्हां दे उपदेशां दा

अनुसरण करके कुल सृष्टि इस पाव सागर तो पार उतर सकती है। आप जी नू पादरों सुदी दूज सम्मत 1638 बिक्रमी नू गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी द्वारा कीते गए महानतम कार्जा विच श्री आद ग्रंथ साहिब जी दी संपादना शामिल है, जो मनुखता दे पले अते मार्गदर्शन दी दिशा विच एक सिरमौर कारनामा सी। ऊच नीच जात पात दे पिन पेद मिटाउंदे हुए सर्ब सांझीवालता दा संदेश प्रसारित करन हित आप जी ने अपने तो पहला दे गुरु साहबान प्रभु दे अनन प्यारे भगतां अर्शी पट्टा अते गुरसिखां दी बाणी संकलित अते संपादित करके इस नूं पोथी दा रूप प्रदान कीता। पादरों सुदी एकम सम्मत 1661 बिक्रमी नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे पावन अस्थान ते पहली वार आद श्री ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करवाया। आप जी ने 30 रागां विच बाणी उचारी, जो कुल मनुखता वास्ते उपदेशात्मक है। आप जी दे नाना साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने आप जी नूं बाणी के बोहित दा खिताब दिता। आप जी प्रभु दे पाणे नूं मिठा करके मंदे सन। जेठ सुदी चौथ सम्मत 1663 बिक्रमी नूं लाहौर विखे रावी दे कंडे असह अते अकह कष्ट सहारदे हुए आप जी ने अदुत्ती शहादत दित्ती ते फरमाया, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। अज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहादत पुरब समुचे विश्व अंदर अथा श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। आप जी दे अलौकिक जलाओ बाबत पट मथुरा जी लिखते ने, जब लौ नहीं पाग लिलार उदय, तब लौ प्रमते फिरते बहुतायो, कल कोर समुद्र में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा जगतारन कौ अवतार बनायो, जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी पुरब दे मौके ते सचखंड श्री दरबार साहेब अमृतसर विखे इलाही अलौकिक माहौल है। फिजा विच चारे पासे इलाही नाद ते अदुती शांति दा पसारा है। श्री हरिमंदर साहेब विखे दर्शन इश्नान लई पुज रहियां संगतां दे चेहरियां ते रूहानियत पसरी हुई है ते रब्बी पाणा मिठा करके मनण दी भावना प्रतख उजागर है। परंपरा अनुसार श्री हरिमंदर साहिब परिक्रमा दे चारे कोनियां ते स्थित छबीलां उपर ठंडा मिठा जल वरताया जा रहा है। दुनिया विच जिथे जिथे भी गुरु नाम लेवा संगतां दा वासा है, उत्थे उत्थे ए परंपरा सदियां तो चलदी आ रही है, जिसका नेक मकसद रूहां दी तपिश नूं शांत करना अते मना अंदर ठंडक दा पसारा करना है। श्री हरिमंदर साहिब दे अंदर सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र स्वरूप नूं खूबसूरती नाल शिंगारिया गया है। दर्शन दीदार तो पहला संगतां पवित्र सरोवर विच इशनान करदिआं इलाही बाणी दा जाप कर रहियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच जुड़ बैठियां संगतां गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन नाल आनंदित हो रहियां ने। आकाशवाणी दे माध्यम नाल आओ असीं वी आप सब नूं इस अलौकिक माहौल विच रूहानी तौर ते लै चलदे हां।

ताज आख्या जान लगा। आप जी सिख पंथ दे प्रथम शहीद सन, जिन्होंने स्वय इच्छा नाल शहादत दे के शहीदी परंपरा दी नींह रखी। गुरु साहिब दी एक होर देण सारंदा साज। सारंदा साज इजाद करके इसका प्रचलन श्री हरिमंदर साहब विखे करना गुरु साहिब दी भारतीय शास्त्रीय संगीत नूं एक अदुत्ती देण है। गुरु साहिब दे पावन शहीदी पर्व दे मौके ते श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे इलाही कीर्तन नाल अलौकिक माहौल सिरजिया गया है। आओ असी भी एकाग्रचित होके कीर्तन दा आनंद माणदे हां।

साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का समुचा जीवन पाने अते सहज दा जीवन सी। आप जी दा जीवन गुरु उपमा विच संगतां दी सेवा विच बतीत हुंदा सी। आप जी दी शहादत भी पाने विच जीवन जीवन अते पाने विच ही अपने आदर्श खातिर अपना जीवन अर्पण कर देण दी अनोखी मिसाल है। शहादत वेले भी अकै कष्ट सहारदे हुए भी आप शांति अते आनंद दे पुंज बने रहे। दस्या जांदा है कि अंतले समय आप जी उपर टाए जा रहे कहर नू वेखदिया होया साई मियां मीर जी व्याकुल हो उठे सन, पर आप जी ने उना नू भी पाने नू मिठा करके मनन दा उपदेश दिता। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी संगीत अते काव्य आदि कोमल हुनरां दे परम ज्ञाता सन, रसिक बैरागी, परम उच्च बाणी दे रसिए, फलसफे अते दार्शनिक विद्या दे सिरमौर सन, शांति अते तीरज दे मालक, जिना अंदर हरख सोग जरा मात्र भी नहीं सी। पूरन गुरमर्यादा विच रहिंदिया होया आप जी ने सिखी मार्ग अपनी पुत्रता विच तोरी रख्या ते सिखी नू पक्के पैरिंग करन वास्ते हरिमंदर दी साजना कीती ते उस अंदर वाहेगुरु उपासना दी अनोखी रीत सदैवी कीर्तन दी आरंभता कीती जो आज तक भी निरंतर जारी है।

0: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਵਜੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, 8:30 ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीति

0: यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई।

0: दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण।

0: पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend

0: अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लई एक सुरक्षित समावेशी अते मनुख केंद्रित पहुंच की मांग की थी। इस गल ते जोर दिता कि AI दा असल माप मशीना दी शक्ति विच नहीं सगों ए है कि आम लोगों नू किन्नी प्रभावशाली ढंग नाल मजबूत बनाउंदा है। एवीएन विच G7 सिखर सम्मेलन दौरान AI दे सुरक्षा तेज अते कुशल रोल आउट नू यकीनी बनाउणा विषय ते सैशन नू संबोधन करदे होए श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच मनुखी जीवन दे हर पहलू नू बदलण दी समर्थ है। डिजिटल युग विच बच्चियां दी सुरक्षा नू दी जरूरत नू उजागर करदे होए प्रधानमंत्री ने सावधान कीता कि जदों की AI सिखण अते रचनात्मकता नू वधा सकदा है, ए नौजवान वरतोंकारां नू गलत जानकारी डीप फेक अते शोषण दा सामना भी करना पै सकदा है जेकर सही सुरक्षा उपा नहीं कीते जांदे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो मध्य प्रदेश अते उड़ीसा दे 5 दिना दौरे ते होणगे। अपनी यात्रा दे पहले दिन राष्ट्रपति मध्य प्रदेश दे बैतूल विखे अध्यात्मिक जागृति राही कबायली समाज दे शक्तिकरण ते एक प्रोग्राम विच शामिल होणगे। राष्ट्रपति इंदौर पहुंचणगे ते फिर बैतूल जाणगे जिथे उन्हां दा ब्रह्म कुमारी से एक प्रोग्राम विच शामिल होण दा प्रोग्राम है। बाद विच ओंकारेश्वर मंदिर जाणगे अते शाम दी आरती विच हिस्सा लैणगे। 19 जून नूं राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय सिकल सैल अनीमिया दिवस दे मौके ते एक समागम विच शामिल होणगे। 21 जून नूं राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर विच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह विच हिस्सा लैणगे। ओह मुख मेहमान वजो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी दे 36वें कन्वोकेशन समारोह विच वी शामिल होणगे। बाद विच ओह नवी दिल्ली वापस आउण तों पहलां कोनो राष्ट्रीय पार्क दा दौरा भी करनगे। भारत अते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई तो लागू होएगा। इस दे नाल ही समाजिक सुरक्षा नाल जुड़ी दोहरा योगदान संधि भी लागू हो जाएगी। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते नाल भारतीय बरामदा नू काफी लाभ होएगा। भारत नू बरतानिया दे बाजार विच 99% समान ते तुरंत ड्यूटी मुक्त पहुंच मिलेगी। इस नाल खास तौर ते कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पादा, इंजीनियरिंग अते प्रोसेस्ड फूड सैक्टर नू लाभ होएगा। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNews जलंधर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने दोवां देशां विचकार संघर्ष खत्म करन लई 14 नुकाती अमन समझौते ते वर्चुअल तौर ते दस्तखत कीते ने। इस विच होरमुस बणजोड़ नूं दुबारा खोलना अते पाबंदियां हटाउण लई 60 दिनां दी गल्लबात अमल शुरू करना शामिल है, जिस विच ईरान दे परमाणु प्रोग्राम ते अंतिम समझौता भी है। एक अधिकारित अमरीकी बयान विच कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पैरिस विच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल अपनी मुलाकात दौरान निजी तौर ते समझौते ते दस्तखत कीते सन। ईरानी विदेश मंत्रालय दे बुलारे इस्माइल वगाई ने भी समझौते ते दस्तखत करन दी पुष्टि कीती है। उन्हां कहा कि ओमान ते होर देशां नाल कुछ समय तो सलाह मशवरा चल रहा सी अते होरमुस बणजोड़ लई प्रबंधा ते अहम समझौता हो गया है। झारखंड विच नक्सली खात्मे की मुहिम नूं वड्डी सफलता मिली है। एक औरत माओवादी पुष्पा महतो, जिसके सिर ते 10 लाख रुपए का इनाम सी, ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता विच पुलिस अगे आत्मसमर्पण कर दिता। पुष्पा महतो 21 साल तो नक्सली गतिविधियां विच सरगर्म सी अते झारखंड के पूर्वी सिंहभूम समेत सरंडा खेतर विच कई घटनावां विच लोड़ींदी सी। पुष्पा विरुद्ध कतल, जबरदस्ती वसूली अते देशद्रोह समेत कई गंभीर मामले दर्ज सन। अपने आत्म समर्पण तो बाद पुष्पा महतो ने जंगलों विच सरगर्म होर साथियों नूं मुख धारा विच वापस आउण दी अपील कीती ते कहा कि नक्सली लहर दा हुण कोई भविख नहीं है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। तरन तारण स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहब तरन तारण विखे विशेष समागम करवाए जा रहे ने। पहला कल तरन तारण च गुरुद्वारा साहब विखे श्री दरबार साहब सरां तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छतर छाया हेठ अते पंज प्यारियां की अगवाई विच विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। खेडां विच चीन दे गुयांग विच चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप विच भारत दे निखिल दी

0: दीपक अते स्नेह ने आपने आपने मुकाबले जीत के क्वार्टर फाइनल विच थां बना ली है। निखिल ने मर्दां दे 55 किलोग्राम वर्ग विच ब्राजील दे कैल्वी त्रिंदादे नूं हराया, जदों कि दीपक ने 70 किलोग्राम वर्ग विच जापान दे सेवोन ओका जावा नूं 5-0 नाल हराया। औरतां दे 65 किलोग्राम वर्ग विच स्नेह ने दक्षिणी कोरिया दी सियोन सुजिन नूं 4-1 नाल हराया। दो भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी अते अविनाश जामवाल अज अपने अपने मुकाबले खेडणगे। विश्व मुक्केबाजी कप एतवार नूं समाप्त होएगा। भारत दी मर्दां दी टीम ने कल एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन प्रो लीग हॉकी मैच विच मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी नूं 3-1 नाल हरा के शानदार जीत दर्ज की थी। भारत ने बीती रात औरतों के 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच विच नीदरलैंड नूं 95 दौड़ा नाल हरा दिता। लीड्स विच खेडे गए मैच विच पहला बल्लेबाजी करते हुए भारत की औरतों की टीम ने नीदरलैंड नूं 209 दौड़ा दा वड्डा टीचा दिता। जवाब विच नीदरलैंड की पूरी टीम सिर्फ 114 दौड़ा बना के आउट हो गई। भारत लई स्मृति मंदाना ने 74 अते शेफाली वर्मा ने 55 दौड़ा का अर्ध सैकड़ा बनाया। शीचराणी ने 4 जदों कि शेफाली वर्मा ने 2 विकटा लईया। नंदिनी शर्मा ने भी 2 विकटा लईया। स्मृति मंदाना नूं प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। आखिर च खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैकरों के नाल वीवा टेक 2026 सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो मध्य प्रदेश अते उड़ीसा के 5 दिन दौरे ते होंगे। भारत अते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता इस साल 15 जुलाई तो लागू होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने दोवां देशां विचकार संघर्ष खत्म करने लिए 14 नुकाती अमन समझौते ते दस्तखत किए। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
2: हेलो,
3: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
4: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो।

शोक चंचल दावा नाल गीत गाए गीता दत्त होरा ने। प्यार है तो फिर देखो संभल के तो चलना ही पैना। गीत विच ही बहुत सारे अर्थ ने, जेकर असी इन्हां गीतां नूं समझिए तां या लफ्ज़ां नूं समझण की कोशिश करिए तां। गल कर रहे हैं गीता दत्त होरा दी, तां बचपन विच उन्हां ने संगीत की सिक्ख्या ली रविंद्रनाथ नंदी तो, गायिका दी यानी कि गायिका बनने वास्ते सिखलाई ली, और गायकी की सिखलाई तो बाद जदों उन्हां दा परिवार मुंबई आ गया तो फिर उस तो बाद संगीतकार के हनुमान प्रसाद जी नाल उन्होंने जड़ा है संगीत सीखिया और फिल्मों लई गाया। हौली हौली उन्होंने फिल्मों विच लॉन्च किया तो फिर एक इतिहासिक फिल्म भक्त प्रहलाद नाल पहला ब्रेक मिलिया, और उस तो बाद जो उन्होंने उस फिल्म विच गीत गाए उस तो बाद फिर बहुत सारे गीत गीता दत्त नूं मिलन लगे। ये उन्होंने पहली पहचान सी, और पहली पहचान तो ही उन्होंने शोक चंचल और हर तरह की वनगी ने आवाज़ दी। गीत चाहे किस तरह का भी क्यों ना हो गई।

तो उम्मीद है कि जेकर गीत चल रहे ना शायद ठंडी ठंडी हवा की तो चल ही पे क्योंकि महीना है जूंदा कोई गल नहीं थोड़े इंतज़ार करो बस फिर हवा बारिश मौसम का जोड़ा बदलना है जल्द ही शुरू हो जाएगा क्योंकि क्या चाहता ना उम्मीद तो ही दुनिया कायम है। खैर जी गल कर रहे हैं गीता दत्त होना दी तो 1947 फिल्म दो भाई जिहड़ी गीत गाए उन्होंने उसकी सफलता तो बाद एस टी बर्मन द्वारा गीत गाया प्रसिद्ध मेरा सुंदर सपना बीत गया ते उस तो बाद उन्होंने थोड़े समय विच यानी कि लगातार उन्होंने काम किया और बहुत सारे गीत सानू दिते। किसी भी गीत में चाहे दर्द सी एहसास सी खुशी सी मौसम का बदलाव सी या कुछ भी सी हर गीत में एक नवा अंदाज देखने मिले गीत दत्त होने की आवाज़ में।

0: सही कह रहा। देखो जून दा महीना है और चुलबुल अंदाज विच गीत सी आवाज सी गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी दी। असी पहले क्या कि गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी उन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत इकट्ठे गाए और गीता घोष राय चौधरी जो कि बाद में जाके गीता दत्त बने। गीता घोष राय चौधरी उन्होंने दे जन्म 23 नवंबर 1903 होया और 20 जुलाई 1900 फानी दुनिया नू अलविदा किया 1972 नू। सो पर साढ़े कोल गीतां दी ये जड़ी उन्हां दी सुगात दित्ती हुई है हमेशा साढ़े कोल है और जो तो भी असीं इन्हां गीतां नूं सुणदे हाँ तां वाकई इन्हां गीतां विच किते गवाच जांदे हाँ। सो इह सी प्रोग्राम एक कलाकार जिस अंतर्गत असीं गल्लां बातां सांझे करे सी गीता दत्त उन्हां ते। बहुत सारे गीत नहीं सुनवा पाए पर हाँ यह है कि उन्हां नूं असीं जिहड़े गीतां दे रूप विच याद कीता है वो तोहफा हमेशा साढ़े दरम्यान है और रहेगा। ते हुण तो कुछ ही पलां बाद असीं थोड़ी नज़र करांगे गज़लां। हाज़र होने एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ।

मोहब्बत का असर देख, लफ्ज़ों को लफ्ज़ों में ही ढाल दिया। कुछ ऐसा ये वक्त का माहौल चला कि बस मोहब्बत का यही असर हुआ कि शब्दों में हर चीज़ ढल गई। रात जो तूने दीप बुझाए वो सब मेरे थे, मेरे थे। आशा भोसले दी गाई हुई गज़ल सही। तो अगली गज़ल है हरी हरन होरां दी आवाज़ विच। जिंदगी विच बहुत सारे पल होंदे ने, जो तो पल गुजर जाते ने फिर यादा रह जांदियां ने। उस याद को कहाँ लेकर जाऊँ जो मन में बसी है। कभी जो याद आए बस याद आते हैं, वही पल वही यादें, मुझे फिर वही याद आने लगे।

यादों के साए में इस एहसास से गुजरे हैं कि बस बहुत दूर तक आवाज़ ना आई, पर जब आई याद आई, और बहुत याद आई। फिर तेरी याद आई नए दीप जलाने, मेरे एहसासों को फिर से जगाने आई ये यादें।

0: हेलो हेलो,
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
1: मैं जायद सिंह खैरा पिंड कलारा जी नाभा आजरा पटियाला तो बोल रहा जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल है जायद जी?
1: बहुत बढ़िया जी, तुसी अपना सुनाओ जी।
0: वधिया वधिया। गीत दस्सो, केड़ा सुनना चाहते हो?
1: मैं जी आरजू गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज लता मंगेशकर जी। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें।
0: शुक्रिया कॉल करने।

0: जी कितनी गए सीते हैं दही बताल 173 है, साड़ा नंबर ई रिकॉर्ड है सिलेंडर का 0181। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलवंत सिंह, पिंड पोजो के जिला फिरोजपुर तो बोल रहे मैम।
0: हाँ जी, की हाल चाल ने कुलवंत जी?
1: मैम बाबे नानक दिया मेरा मैम बहुत वधिया, तुसीं सुनाओ।
0: बिल्कुल ठीक, गीत दसते हो?
1: गीत है जी कुर्बान मूवी का जी, ये धरती चांद सितारे।
0: ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए।

0: मैंने हेलो फरमाइश और साडा नंबर है 2342173। हेलो
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मैं सोहन लाल बोलता पिंड समान वाला जिला फाजिलका।
0: हाँ जी, की हाल चाल ने सोहन लाल जी?
1: ठीक ठाक जी मैडम जी, तुसीं अपने दसो।
0: वधिया, गीत दस दियो।
1: अपने एक सी गुल एक सा बुलबुल,
0: फिल्म जब जब फूल
1: जब जब
0: खिले।
1: मुझे फूल खिले। हाँ जी
0: ठीक है, धन्यवाद फोन करने लिए।

0: राम है। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: जी, सत श्री अकाल मैडम जी। मैडम
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
1: जी, मैं सीताराम बोल रहा हूँ, जलंधर मॉडल टाउन ब्लाइंड स्कूल।
0: अच्छा, की हाल चाल ने?
1: मैं बढ़िया जी, मैंने आज बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा फोन लग गया है, पहली
0: लग गया
1: बार
0: चाल।
1: लग गया है मीडियम से।
0: ठीक है, कर दे रो फोन, फिर लगता रहेगा। तो बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: हाँ जी,
0: देखो, सानू पता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फोन लाने नू, क्योंकि जब असी कदे कोशिश करते हैं साडा कदे नहीं मिलता है
1: सही
0: ना।
1: गल
0: ये
1: है
0: दस
1: जी, ये
0: कहना
1: तो है
0: सुनना
1: जी।
0: है?
1: मैडम मैनू दिल फिल्म भी तो सुना दो, कोई भी गाना,
0: ठीक है,
1: मतलब गाने
0: बहुत
1: सारे
0: बहुत
1: बढ़िया है।
0: धन्यवाद फोन करने लई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जी।
0: जी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: प्रोग्राम में हेलो फरमाइश। हेलो
4: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
4: मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ, मलेरकोट ने। तो
3: हाँ जी, की हाल चाल है राकेश जी?
4: बहुत बढ़िया जी, तुसी सुनाओ तुहाडे की हाल चाल है?
3: वधिया वधिया, गीत दस्सो केड़ा सुनना?
4: वधिया चाहिदा जी, फिल्म आई दीवाना सुना दिओ।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश तेई 42 173 है साडा नंबर। हेलो,
1: राम राम मैडम जी।
0: राम राम जी। राम राम, कौन बोल रहे हो?
1: अजी सरवण कुमार रणुआ गानी रामवाड़ी।
0: की हाल चाल है सरवण जी?
1: बढ़िया है जी मैडम जी।
0: वधिया, बस वधिया रहना चाहिए। गीत दस दियो फिर।
1: गीत मैडम जी अपना दर्पण फिल्म शो टाइटल सॉन्ग सुना दो। और एक जगह पंजाब का अंज छेक बंदा बिंदी कोयल में लावे आंगो थे रजिस्टर नोट करके रखे हो भी।
0: आपकी बात समझ नहीं आ रही सरवन जी, आप गीत सुने। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने लिए।

0: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश ते बतालिक 173 है साड़ा नंबर। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल भैन जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
1: बलजीत सिंह, पिंड बजीतपुर भोमा भैन जी। ठीक
0: हाँ जी, की हाल चाल है बलजीत जी?
1: है भैन, तुसी दसो।
0: वधिया वधिया, तुसी लोग फोन कर दे हो, वधिया हो जांदा है। गीत दस दे हो, केड़ा सुनना आज दे इस प्रोग्राम विच?
1: गीत मैं दस देना भैन जी, चिट्ठियां मिट्टियां प्रोग्राम दे विच मैं कई खत पाते जी, उन्हां दा जवाब नहीं आया।
0: चलो असी कर देंगे शिकायत, ते दूर हो जाएगी।
1: ठीक है जी।
0: ठीक है,
1: ਕੀ ਸੁਣਾਵੇ ਚਾਨਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨੌਂ ਨੌਂ ਚੂੜੀਆਂ।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: सत श्रीकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? पहली
1: हाँ जी, पाली प्याला जिला हुशियारपुर मैम बोल रही।
0: बार गल कर दे हो?
1: नहीं मैम, लगता रहिंदा कितने कितने।
0: अच्छा, गीत दसो।
1: गीत मैम साजन मूवी का ला दो कोई भी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लगे।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं हरपाल परदेसा बोल रहा हूँ, जिला मोगा से। हेलो,
0: अच्छा, गीत केड़ा सुनना?
1: गीत
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं के गीत केड़ा सुनना?
1: सोना जी, चोर फिल्म पानी दे पानी तेरे बंद कर।

0: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार। फोन रख के भूल मत जाया करें। बताए कौन बोल रहे हो।
1: गांव गुड़ी कुटाहा जिला पंचकुला से सिराजुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं
0: हाँ जी, की हाल चाल ने सिराजुद्दीन अंसारी जी।
1: अल्लाह का कर्म है और आप सबकी दुआएं हैं मैडम जी। आप सुनाओ जी।
0: जी, दुआएं होती हैं खुदा की, ऊपर वाले की, ठीक है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: चलिए गीत बताएं।
1: ये गोपी फिल्म से सुना दियो जी, मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

टाउनशिप सेक्टर 8 पिलाई नगर छत्तीसगढ़ तो अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा दीपक अनुश्री पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मनवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह पुरुषोत्तम नीलम तनवी जोया गुड्डू ये सानू फरमाश भेजने जी कपूरथला तो टानीनाथा सिंह जंडवाला तो सानू फरमाइश भेजी है जी सुखचरण सिंह केवल सिंह

पुरुषोत्तम नीलम, तन्वी, जोया, गुड्डू, ये सानू फरमाश भेज रहे हैं जी कपूरथला तो। टानीनाथा सिंह जंडवाला तो सानू फरमाइश भेजी है जी। सुखचरण सिंह, केवल सिंह, मनदीप, गुरनूर, वरिंदर, चरतवीर ते अमानत कौर होना ने। रिगनी छत्तीसगढ़ तो, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, डाबकी रोड अकोला तो, सुशीला देवी, मंदूरकर, सनादन कुमार गौरव ते इन्हां दे बहुत सारे साथी, पिंटे डाकखाना जिहड़ा खुईयां सरवर तो सानू अबोहर फाजिलका तो फरमाइश भेजी है। रमेश बिल्ला चावला, रायजल, विहान, आस्था, संतोष, हेमंत, रमेश, रिजू, बब्बू, वीहू चावला ते इन्हां दा पूरा ही चावला परिवार। खनौरी मंडी, पुराने स्टेट बैंक वाली गली, बिंदु बेदी, रिंकू कैंत, बलबीर सिंह अरनो ते हरभजन सिंह सानू फरमाइश भेज रहे ने। बलविंदर सरां गुंतास, रशनप्रीत, मनिंदर सरां पिंड मोहनजड़ सिखा हनुमानगढ़ तो सानू फरमाइश भेजी है जी। आओ सुनते इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश ते सलीम दी आवाज़ विच एक गीत।

0: चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते विड़े।

समय दे सुनहरे पंछी ने बाग दे उपर एक चक्कर लाया तो उन्हू हर पासे सुन वीरानी नजर आई। उदा मन डाढ़ा दुखी होया। दसंबर का चौथा हफ्ता चल रहा सी। हर पासे गोड़ियां वर्गी सफेद बर्फ टिक रही सी। घरां उपर बर्फ, बागां च बर्फ ते फुल्लां बूटियां उपर भी बर्फ ही जमदी जा रही सी, जिस नाल सब कुछ सफेद ही नज़र आ रहा सी, जिवें हर पासे कफन विछया होवे। इस तरह के मौसम विच कोई भी बंदा घरों बाहर नहीं सी निकल रहा। हर कोई सोच रहा सी इह तां निरी कयामत है। इस तरह के बेदर्द दिन तां कदे नहीं सन आए। इस तरह के बर्फीले मौसम विच भी समय का सुनहरा

0: ताकि ताकि तू मेरे लिए सूली ते लटकेगा।
1: हाँ, दसंबर दे इन्हां बर्फीले दिनां च कोई ना कोई सूरमा मनुख ही जन्म लेगा जिहड़ा जिहड़ा सब दी खातर सूली लटकेगा।
0: है सब दी खातर सूली लटकना जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल, पर जो हक सच लई होए तां।
0: पर मैनू तेरी कोई भी गल समझ नहीं आई।
1: तू सब कुछ समझ जाएगा, बस मैनू अपने कंडे ऊपर बैठ लैन दे।
0: मैं तेनू किवें रोक सकता? ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती वाली गल है। होर पंछी जदों मेरे वल मूंह भी नहीं करते, तू इत्थे बैठना चाहुंदा है, तू खुशी नाल बैठ जा। पर मेरे कोल तेरे लिए कंडियां दे अलावा होर कुछ नहीं भरा।
1: मायूस ना हो, तेरे कोल एक फूल भी तो है ना।
0: हाँ, पर मैं उसनू मौसम दियां बेरहमियां तो मसीह बचाया है। वो मेरी खुशी दी रीझ है, पर उदा कोई रंग नहीं रहा।
1: कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तू बस मैनू बैठन दे ते मैनू गाउन दे।
2: समय दा सुनहरी पंछी गुलाब के बूटे उपर कंडियां ते बैठ गया ते गाउन लग पिया।

0: पंछी लगातार गीत गा रहा सी ते गुलाब दे बूटे विच नवे जीवन का संचार होने लग पिया सी, जिस करके उन्हें पंछी दे शरीर की पीड़ नू महसूस करके कहा,
1: उफ उफ बस कर भरावा, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा।
2: क्यों क्यों बर्दाश्त नहीं हुंदा?
1: मेरे दिल नू कुछ होण लग पिया।
2: मैं एहो ही चाहुंदा सा।
1: पर तेरी मौत हो जाएगी।
2: तद की है।
1: पर मैं ये नहीं चाहुंदा।
2: पर मैं अपना कार्य करके ही हटांगा। हाँ, मैं इसे काम ले इत्थे आया।
1: पर तको ना।
2: नहीं नहीं, मैं तेरी गल नहीं सुनांगा। बेहतर है कि तू चुप रहो।
1: लोग मैनू लोभी कहणगे। लोभी
2: बड़ा कुछ कहणगे लोग, बड़ा कुछ, पर वो तेनू जिउंदा वेख के चुप कर जाणगे। तू हक इंसाफ की गल करी, हर किसी च खुशी वंडी
1: है। पर पतझड़
2: ये सदा नहीं रहनी, नहीं रहनी है सदा।
0: पंछी की गल सुन के गुलाब का बूटा चुप कर गया। तो पंछी गाउण लग पिया। वो हौली हौली अपने शरीर नू कंडियां विच होर गहरा खोबता जा रहा सी, जिस नाल उदे शरीर विचों लहू वग टुरिया सी। पंछी का वह लहू बूटे दियां नाड़ां विच भरता जा रहा सी। वह लहू बहुत गाढ़ा ते सूहा सी। उस नाल बर्फीले वातावरण विच महक फैलती जा रही सी। उस महक नाल बर्फ पंघरन लग पई सी। तपश दा एहसास हो रहा सी। समय दे पंछी ने देखा कि गुलाब दे बूटे उपर लगे हुए एक एक सफेद फुल दा रंग पहला कसमैला होया, फिर गुलाबी हो गया ते अंत विच लाल सूहा हो गया। वो फुल बहुत चमकीला ते जीवन नाल भरपूर लग रहा सी। उस ते बर्फीला मौसम भी कोई मारू असर नहीं पा रहा सी।
2: मैं यही चाहता सा, यही चाहता सा। ये चमत्कार लहू देके ही हो सकता है।
0: गुलाब दे बूटे ने भी अपने सफेद फुल नू लाल हुंदियां वेख्या ते उदा मन प्रसन्न हो गया। उदा सिर गौरव नाल उच्चा भी होण लग पिया। उनू ख्याल आया,
1: है ये चमत्कार है, पर इस तरह दे चमत्कार कदी हुंदे ने।
0: पर फिर अगले ही पल गुलाब दा बूटा डुसकण लग पिया। उन्हों महसूस हो रहा सी कि उन्हें तो कदी किसे लिए भी इन्ना कुछ नहीं किया। हाले गुलाब का बूटा यह गल सोच ही रहा सी जदों ने वेख्या कि उदी खातिर लहू डोलन वाला समय का पंछी बेहोश होकर डिग पिया सी। उदे शरीर विचों काफ़ी लहू वग गया सी ते उदा साह औखा चल रहा सी। हर पासे बर्फीला मौसम फैलिया होया सी। समुचे बाग विच बर्फ रूह दे गोड़िया वांग टिक रही सी, पर सुनहरी पंछी बेसुध होके घा उपर बर्फ ते पिया सी। उदा शरीर कंडिया नाल लगे जख्मा करके छटपटा रहा सी। उस वेले भी वह सोच रहा सी,
2: इस साह कुट में बर्फीले मौसम च गुलाब दा फुल जिंदगी दी सुंदरता दा चिन्ह है। एदी महक कदी भी मरनी नहीं चाहिए, नहीं मरनी चाहिए।
0: समय दे पंछी दी ए हालत वेख के लाल सूहे हो चुके गुलाब दे हंसू हंसू कर दे फुल ने घबरा के कहा,
1: तुसी की कीता?
0: समय दे सुनहरे पंछी ने उनू

0: धीरज देंदे क्या तू चिंता ना कर
1: पर क्यों
0: सुखा में जीवन दी ना वो सारी ले सूली ते लटकना ही पैंदा लटकना ही पैंदा लटकना

0: बहुत ही खूबसूरत कहानी है आकाशवाणी के खजाने चो कथालोक सिलसिले तहत ना वो सारी
1: बहुत बहुत प्यारी। और मैं देख रही सी कि पूनम तुसी बड़े ध्यान दे नाल सुन रहे हो ते बहुत चंगी तरह पेश कीती गई ना वो सारी नई जिंदगी दे विच जो भी माड़ा हुंदा जो भी तकलीफदायक हुंदा एक दिन नवा दिन नवी चीज़ा जरूर हुंदियां ने।
0: बिल्कुल जी, कहानियां सानू यही सिखाउंदियां ने कि जिंदगी दे विच जो उतरा चढ़ा है, रिश्तियां दा जो ताना बाणा है, साढ़े मन दे जो भाव ने उसनू असी किन्नी खूबसूरती दे नाल बयान कर सकते हैं। सो इस सिलसिले तहत असी आकाशवाणी दे खजाने चो ये जो साड़ियां रिकॉर्डिंग्स ने एक पुरानियां वह तुहाडे तक लैके आउंदियां ते हुण इस कहानी तो बाद एक खूबसूरत गीत लैके आ रहे हैं
1: जी।

0: सुन रही परिवारिक प्रोग्राम वास्ते वेले अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले एक वजह है हूँ तुम सुनोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो बस कुछ ही पलों च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: संचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 1:05 ते 2 सेकेंड होए ने। हुण पेशे प्रोग्रामा दा वेरवा।

हुण तो कुछ समय बाद यानी 1:15 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम च लखमीर सिंह मस्त कविशर ते साथियां पासो कविशरी सुनोगे। 2:30 बजे शुरू होगी शाम 4 बजे सभा दे शुरू च मुख खबरां पेश करेंगे। शाम 4:30 बजे तुसी सर्वण करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण ते सर्वण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे।

शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां अज दे पा कल दे प्रोग्राम मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह बकरियां पालन बारे जानकारी देणगे। केंद्र सरकार दे 12 साल पूरे होने ते साडे दिल्ली केंद्र तों विशेष प्रोग्राम तुसीं सुणोगे 7:10 ते 7:45 ते समाचार दर्शन प्रोग्राम पेश कीता जावेगा। 7:55 ते आबशार प्रोग्राम तहत समात फरमाओ के चंद गजलां। रात 8 बजे पेश करेंगे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे कंट्री वाइड ते 9:45 ते इनसाइट्स प्रोग्राम तुसे सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। 10:02 शास्त्र संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च पंडित निखिल बैनर्जी दा सितार वादन सुनोगे राग चंद्रकौंस। 10:30 बजे सरगम प्रोग्राम पेश कीता जावेगा। सो एसीजी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा फेरफार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1:10 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ।

0: तो मुक्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया सी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश विच नक्सलवाद नु पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा ते ए वादा हुन पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक निवासी ने सरकार के यत्ना की शलाघा करते हुए कहा कि इसने देश नु नक्सलवाद तो मुक्त करने के अपने वादे नु निभाया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: झारखंड के गुमला जिले के निवासी तेंबू राव ने कहा कि जदों तो मोदी सरकार बनी है नक्सलवाद हौली हौली खत्म हो गया है, लोग शांति ते सद्भावना नाल रह रहे ने।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के गिरफ्त में था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अभी
0: आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी दहाकिया दी हिंसा दौरान लोकतंत्र विकास ते संविधान दी जीत दा प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
3: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 औरतें शामिल ने। पुलिस ने दसा कि हादसा रात 2 बजे के करीब वापरिया। मुढ़ की जांच तो पता लगा है कि हादसा उस समय वापरिया जदों ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल नहीं रहा तो यह खड्ड में डिग पिया। पुलिस और स्थानक निवासियों की मदद न सारिया लाशा खड्ड में कढ़ लई गई ने। चंबा के पुलिस सुपरडेंट विजय सकलानी ने कहा कि लाशा को पोस्टमार्टम लिए चंबा के सरकारी मैडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा के सत्कार मनाया जा रहा है। तरन तारण स्थित गुरद्वारा श्री दरबार साहब विखे विशेष समागम कराए जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचकूला में गुरद्वारा श्री नाडा साहब विखे पहुँच के मत्था टेकया तो श्री गुरु अर्जन देव जी को श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस तरह पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी श्री गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने शहीदी दिहाड़े पर श्रद्धांजलि भेंट की है। FIH महिला नेशनस कप हाकी में आज न्यूजीलैंड में भारत ने उरुग्वे 3-2 हरा दिता है। भारत की दीपिका ने 2 ते दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। भारत ने पूल ए में सिखर ते रह के सैमीफाइनल लिए क्वालीफाई कर लिया है। सैमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून चिली ते कोरिया विचकार होने वाले मैच के जेतू नाल होएगा। फीफा विश्व कप 2026 अज सवेरे कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान 3-1 हरा दिता है। इस तो पहला घाना ने पनामा उत्ते 1-0 की शानदार जित दर्ज की। इस दौरान इंग्लैंड ने अपनी मुहिम की शुरुआत क्रोएशिया खिलाफ 4-2 की जित नाल की है। कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी समेत 2 गोल किए। अज रात ग्रुप ए में चैक गणराज का मुकाबला दक्षणी अफरीका नाल होगा। दूजे मैच में मैक्सीको ते दक्षणी कोरिया आमो सामने होंगे। अंत विच चोणवियां खबरां ते एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे हासिल करने जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा में पिछे न रह जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक रितब्रत बैनर्जी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा विरोधी धिर के नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने से इनकार कर दिया है। FIH महिला नेशनस कप हाकी में भारत उरुग्वे 3-2 हरा के सैमीफाइनल में पहुंच गया है। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होएगा। नमस्कार।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रितब्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा पर अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में FIH ख्वातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है।

0: करीब पेश आया जब एक बोलेरो गाड़ी काबू से बाहर हो गई और तकरीबन 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। चंबा के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा के एक कारिंदे से है। यह शख्स सरहद पार मनशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलव्वस है। ये नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कारिंदा अंकुश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। NIA की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि अंकुश के राबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था जिसकी शिनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई है जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है जिसके तहत लगभग 4 महीने से जारी लड़ाई फौरी तौर पर ख़त्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जाम अमन समझौते के खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से जारी तनाज़े को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्द व नवाह में बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना शुरू कर देगा और आबनाए हुरमुस के रास्ते बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। न्यूजीलैंड में जारी ख्वातीन के FIH हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो पूल ए में सर फहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर एक गोल किया था जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर एक गोल किया। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के में एक मैच में उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज़ किया। ये मैच आज सुबह मेक्सिको शहर के इस्तादियो एस्तिका में खेला गया। इससे पहले ग्रुप एल में घाना ने पनामा पर 1-0 से जीत हासिल की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर अमल दरामद शुरू हो गया है जिसकी वजह से अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम फौजी वीरां लई जारी है।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च आखरी नगमा सुनवा जा रहे हैं जी, फिल्म सैनिक चो। इस गीत नू आवाज दित्ती है कुमार सानू ते साधना सरगम ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी

0: सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर

0: पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर के 2:30 बज रहे ने। हुण पेशे रंगली धरती प्रोग्राम तहत लखमीर सिंह मस्त कविशर ते साथियां पासो कविशरी।
2: जब लो नहीं भाग लुलारे उदय तब लो परम ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जहे मथुरा जग तारन

ऐसे सतगुरु साहिब गुरु अर्जन साहब पातशाह पंजवें गुरु नानक जिन्हां ने सभे सांझी वाल सदायन दा सदा देण लई पवित्र हरिमंदर साहब की रचना की अते उस हरिमंदर साहब विच गुरुआं दे नाल नाल संतां भगतां फकीरां अते भट्टां दी ब्रह्म बाणी नूं लैके गुरबाणी दा ओ गहरा सागर जिहदे विच सभे सांझी वाल सदायन दा होका पूरी मनुखता नूं मिलिया ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ

0: संदेश दिता है ब्रह्म नाल लीन होने लई, क्योंकि ओही मनुख है जिहड़ा एक एक श्वास प्यारे दी याद विच गुजारद है। इस आशे नूं चंद लाइना इह अर्ज कीतियां जा रही हन।
1: एक ओम तो पसरिया ब्रह्मंड ये सारा,

आत्मा नूं नहीं। सतगुरु अर्जन साहब जी दे उभदी देग विच बैठण ते ठंडी हवा मान रहा, शरबत पी रहा ते पक्षियां दी झल दी हवा लै रहा, दीवान चंदू सड़दा नजर आ रहा सी, पर सतगुरु सड़दे पाणी विच चेहरे तों प्रतीक सन के बिल्कुल शांत चित बैठे ने। सारी मनुखता दे लोक चंदू नूं लांता पा रहे ने। धन गुरु अर्जन साहब जी नूं नमस्कार कीती जा रही है ते नाल गुरु अर्जन साहब जी नूं जन्म देण वाले कुरबानी दी पुतली मां भानी दा जस किया जा रहा है, उस सच्ची हकीकत नूं चंद लाइनां विच इउं अर्ज किया जा रहा है।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मीठियां अपनी दोस्त कृतिका कौशल दे नाल। ते जिवें कि तुहानू पता है कि अज श्री गुरु अर्जुन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा असीं मना रहे हां। ते उहनां दी सिक्ख्यावां विच इही है कि आत्मिक अडोलता ते निमरता भी होनी चाहीदी है। आप जी का जीवन उच्ची सोच, अडोल विश्वास ते अत्यंत निमरता का प्रतीक होना चाहीदा है। ते नाल दे नाल तुहानू इन्हां सारियां चीज़ां ते जो है खरे उतरना भी पएगा। क्यों? क्योंकि तुहाडे माता पिता ने बहुत ही कहिंदे ना कि बड़ी मेहनत करके तुहानू पालिया पोसिया हुंदा। ते इन्हां सारियां सिक्ख्यावां दे जे तुसीं चलदे हो, माड़े मोटे भी चलदे हो, तां तुहाडे माता पिता दा जो सर उच्चा हो जांदा।

ते श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी की स्थापना भी की। 1604 विच आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला स्वरूप तैयार करवा के श्री हरिमंदर साहिब विखे सुशोभित किया। ते ए भी अपने माता पिता दे इन्ने प्यारे पुत्र सी जिन्होंने अपनी जान दे के अपने देश दे लई अपना जो है सारे का सिर उच्चा रखा। ते असी भी यही मान रखते हैं कि तुसी भी सारे इसी तरह दी सिक्ख्यावां ते इसी तरह दी रोज़ रोज़ दिन त्यौहार मनाए जाते हैं या दिहाड़े मनाए जाते हैं उन्होंने जरूर याद रखोगे। फिलहाल चिट्ठियां भी तुहाडा इंतजार कर रही ने कि कित्थों आईया ने पढ़ लैने। गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी। फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते सारा गिल परिवार। ज़िला फजलका तो विनोद काटपाल, प्रवीण, हनी, दीक्षा, जन्नत, दीपा ते बलकार। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत, सरिता, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत, प्रणीता, अकार हाइट्स, बहादुरा नागपुर तो वैशाली, शलेश, श्वेता, सुमित ते ध्वनि। मॉरल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी ते आशा गुगलानी। ते इन्हां सारें दी फरमाइश ते आपां सुन लैने आ जी। गुरदास मान दी आवाज़ विच जी ये गीत ते गुरदास मान जी दा जो हर गीत है वह बहुत ही खूबसूरत होंदा है। हर लफ्ज़ विच कुछ ना कुछ इस तरह का संदेश छुपया होंदा है कि हर कोई इस नूं सुनन लई मजबूर नहीं, खिलखिला जांदा है इन्हां दे गीतां नूं सुन के। सुनदे आं इन्हां दे गीतां नूं।

नमस्कार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 804 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 4 बज रहे ने। हुण साडी अज दी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सभा दे शुरू च पेश है मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों नाल वीवा टेक सम्मेलन विच शामिल होंगे। वह पैरिस विच फ्रांस के प्रमुख व्यापारक आगुआं दे नाल उच्च पदरी मीटिंगां भी करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन लई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा विच पिछे ना रह जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक रित्राब्रत बैनर्जी नूं पछमी बंगाल विधानसभा च विरोधी धिर दा नेता नियुक्त करन दे फैसले ते कोई अंतरिम रोक लगाउण तों इनकार कर दिता है। हिमाचल प्रदेश दे चंबा जिले विच बीती रात एक सड़क हादसे विच 7 लोकां दी मौत हो गई। पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि 1.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करके पंजाब ने इतिहासिक मील पत्थर स्थापित किया है। आज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला कमीशन के चेयरपर्सन विजय किशोर रहाटकर ने आज पटियाला च कहा है कि पीड़ित महिलाओं नूं न्याय दवाउण लई कौमी महिला कमीशन के दरवाजे हमेशा खुले ने। केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र जलंधर वालों मानसा जिले विच नरमे दी फसल विच कीड़ियां अते बीमारियां दी मौजूदा स्थिति दा मुलांकन करन लई एक सांझा खेतरी सर्वेखन कीता गया। पंजाब राज सफाई कर्मचारी कमीशन दे चेयरमैन चंदन गरेवाल ने जलंधर पछमी समेत शहर दीआं वख-वख थावां ते सफाई ते सीवरेज व्यवस्था दा जायजा लिया। महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट वालों कमीशन हासिल करने वाले होनहार कैडिटा अते नैशनल कैडिट अकैडमी तो ग्रेजुएट हुए कैडिटा नूं वकारी अचीवर्स अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। FIH महिला नैशनल्स कप हाकी विच भारत आज उरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। सो ए सी जी मुख खबरां।

उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। रबी रजानु रबी पाणे नु मनन वाले ए इलाही बोल बाणी के बोहित शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित ने वैसाख वदी सतवीं संवत 1620 बिक्रमी नु श्री गोइंदवाल साहिब विखे पिता साहिब श्री गुरु रामदास जी दे गृह विखे माता पानी जी दी कुखों अवतार तारण वाले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी परतख हर सन आप जी प्रभु भक्ति विच लीन रहिंदे, आप जी प्रभु पाणा मनन दी सिखर सन। भादरों सुदी दूज संवत 1638 बिक्रमी नू आप जी नू गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने महान सेवा कार्य कीते। श्री संतोखसर साहिब, श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर, श्री तरन तारण साहिब, श्री छेहरटा साहिब, श्री करतारपुर साहिब, श्री बौली साहिब, श्री रामसर साहिब, गुरु का बाग, तहसील अजनाला आदि स्थानां दी सेवा करवाई। आप जी ने अनेका महान कल्याणकारी कार्य कीते। ऊंच नीच जात पात दे भिन्न भेद मिटाउंदे होए सांझीवालता दा संदेश प्रसारित करन वास्ते अपने तो पहला दे गुरु साहिबान प्रभु दे अनन प्यारे भगतां अर्शी पट्टां अते गुरसिखां दी बाणी संकलित अते संपादित करके पोथी दा रूप प्रदान कर दिता। आप जी ने भादरों सुदी एकम संमत 1661 बिक्रमी नू सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर विखे पहली वार आद श्री ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करवाया। आप जी ने 30 रागां विच बाणी उचारी जो के कुल सृष्टि दे लई उपदेशात्मक है। आप जी बाणी के बोहित सन। आप जी ने कलयुग विच ऐसा बोहित तैयार कर दिता जिसनू श्री ग्रंथ साहिब कह के सत्कारिया जांदा है। आप जी ने जबर जुल्म दा टाकरा सबर नाल कीता। आप जी ने इस सब कुछ नू रबी पाणा मन के वक्ती हुकमरान द्वारा दित्ते

सतत विचार यह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो, जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ए स्वये दा गायन कीता सी भाई कपूर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठिया होया, सीस विच गर्म रेत पवांदिया होया, उबलदी देग विच बैठदिया होया भी उस प्रभु नाल एक मिकसन। आप जी ने ए बचन उचारे, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। इस शब्द का गायन कीता है भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

0: तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जथे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दर्शन सिंह।
1: आसा कर सतवां महला पंजवां, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, रहाउ तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। ये पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहेथ धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दा राग आसा दे विच उचारण कीता होया है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 394 ते सुभायमान है। इस पावन शब्द विच गुरु साहिब जी उपदेश करदे हन कि प्रभु दे नाम दी बरकत नाल मनुख आप तरदा है ते होरना नूं वी संसार समुंदर तों पार लंघा देंदा है। नाम जपण वाला उस दी रजा नूं उस दे पाणे नूं सदा मिठा करके मनदा है। गुरु अर्जुन देव जी दा जन्म 15 अप्रैल 1563 नूं गोइंदवाल साहिब विखे माता भानी जी दी कुखों होया। श्री गुरु अमरदास जी ने आप जी नूं दोहिता बाणी का बोहिथा अर्थात बाणी दा जहाज़ होण दी आसीस बख्शी। गुरु अर्जन देव जी ज्यों ही गुरता गद्दी ते विराजमान होए, पिरथी चंद दी विरोधता दिन ब दिन वधण लगी, पर आप खिड़े मथे सहारदे रहे। गुरु साहिब जी दी संसार नूं सब तों वड्डी देण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़। सतगुरां ने इस नूं अपनी हयाती विच तैयार करवा के इस उत्ते प्रमाणकता दी मोहर ला दित्ती, तां जो इस विच किसे दुखी वल्लों कच्ची बाणी रला के गुरु सिद्धांतां विच कोई गड़बड़ ना कीती जा सके। दूजी विलक्षण गल यह है कि इस विच केवल सिख गुरु साहिबां दी ही बाणी नहीं, सगों 5 सदियां दे देश भर दे भगतां भट्टां हिंदू मुसलमान संत सुधारकां दी बाणी भी शामिल है। जदों गुरु साहिब जी दी शहादत वल झाती मारदे हाँ तां इह सिख इतिहास विच पहली अते विश्व दे इतिहास विच लासानी बेमिसाल ते जुग पलटाऊ सबर दी जबर विरुद्ध अमर ते अजोड़ शहीदी कही जा सकती है। गुरु साहिब जी दी शहादत पिछे उन्हां कट्टड़वादी तंग दिलियां अते राजसी संस्थावां दा हाथ है, जो सिखां दे मानववादी सिद्धांत सांझे लंगर सांझी पंगत भै भरम रहत समाज दी ताब ना झलदियां होयां अते खास कर सिखां अंदर आ रही जागृति तों खफा हो के चढ़ रही सन।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech, this is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,000

0: 649 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आउन थानू दस दिए अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की।
2: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
4: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो इस वेले देश गान।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: यार सच दसा, हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हज़ार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया है। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, वो आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही देना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के नहीं रहे वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY अधीन करीब 2400 करोड़ रुपए दे लाभ वंडणगे। पंजाब विच यह प्रोग्राम 6 थावां ते कराया जाएगा। केंद्र सरकार वालों इतिहासक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट नूं मुड़ जीवंत किया गया। करीब 1400 करोड़ रुपए नाल 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल लाइन बनाई जाएगी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिया 8 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया है। अज पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। ते औरतां दे FIH नेशंस कप हॉकी विच भारत ने उरुग्वे नूं 3-2 नाल हराया। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 19 जून नूं विज्ञान भवन नवी दिल्ली विखे होण वाले एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY अधीन सीधे लाभ तबादले राहीं करीब 2400 करोड़ रुपए दे लाभ वंडणगे। यह प्रोग्राम भारत भर के सारे 200 स्थानां ते सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिथे लाभ की वंड भी होगी। पंजाब विच यह प्रोग्राम पटियाला, संगरूर, लुधियाणा, EPFO जलंधर, अमृतसर ते पटियाला PFO दफ्तरां समेत 6 थावां ते कराया जाएगा। इस मौके दो वख-वख श्रेणियां दीन 16,417 मुलाजमां अते 1,256 मालकां विच करीब 9 करोड़ रुपए तो वध दी रकम वंडी जाएगी। ये वंड EPRO चंडीगढ़ EPFO दफ्तर विखे भी की जाएगी। इस विच एक महत्वपूर्ण वंड विच योजना नूं लागू करना एक मील पत्थर है, जो कि भारत सरकार दी रोजगार नूं हुलारा देण संबंधी प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश नौकरियां दी सृजना नूं तेज करना, बाकायदा रोजगार नूं उत्साहित करना, रोजगार योग्यता नूं वधाउणा ते वख-वख खेत्रां विच समाजिक सुरक्षा कवरेज का प्रसार करना है। इस योजना ने पहलां ही देश भर विच 15 लाख रोजगार के मौके पैदा करन विच मदद कीती है। सरकार ने कहा है कि देश में सारे तेल स्रोत कारखाने पूरी समर्था नाल काम कर रहे ने अते कच्चे तेल दे टुकवे भंडार ने, जदों कि पेट्रोल ते डीजल ने काफ़ी भंडार नूं बरकरार रख्या जा रहा है। पश्चिमी एशिया विच हालिया गतिविधियां बारे आज नवी दिल्ली विच अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग नूं संबोधन करदिया पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय विच जॉइंट सकत्तर सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों विच 1.36 करोड़ LPG सिलेंडर बुकिंग प्राप्त हुई, जदों कि 1.47 करोड़ सिलेंडर डिलीवर किए गए। वधेरे जानकारी दिंदिया उन्होंने कहा,

0: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: बंदरगाह जहाजरानी ते जलमार्ग मंत्रालय विच डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने दस्सिया है कि माल्टा चंडेवाला 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लिया रहा जहाज दिशा दे कल सवेरे गुजरात के दहेज बंदरगाह ते पहुंचने की उम्मीद है। जहाज ने सोमवार नूं होर्मुज बुणजोड़ पार किया सी। पंजाब ते माझा खेतर लई एक इतिहासक प्राप्ति वजो भारत सरकार ने लंबे समय तो पए कादियां ब्यास नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट नूं मुड़ जीवंत कर दिता है। अज नवी दिल्ली ते रेल भवन विखे मीडिया नूं संबोधन करदिया रेलवे अते खुराक प्रोसैसिंग सनत बारे राज मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो जी का धन्नवाद किया। उन्हां कहा कि पंजाब विच रेलवे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन अते खेतरी विकास नूं गति देण लई केंद्र सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। कादियां ब्यास रेल लिंक बारे विस्थार नाल जानकारी दिंदिया श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दस्सिया कि तजवीजशुदा रेल लाइन गुरदासपुर जिले के कादियां नूं अमृतसर जिले के ब्यास नाल जोड़ेगी। करीब 39.68 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉडगेज रेल लाइन की अनुमानित लागत करीब 1,400 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट नूं उत्तरी रेलवे वल्लों लागू किया जाएगा। तजवीजशुदा रेलमार्ग कादियां तपाई कुमान बटाला सठियाला अते ब्यास वर्गे महत्वपूर्ण कस्बियां ते पिंडां विचों लंघेगा। इस नाल माझा खेतर के कई इलाकियां नूं पहली बार सीधा रेल संपर्क प्राप्त होगा अते स्थानक लोगों की आवाजाई विच महत्वपूर्ण सुधार आएगा। प्रोजेक्ट तहत आधुनिक रेलवे बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा जिस विच कुमाण अते बुटाला विखे 2 क्रॉसिंग स्टेशन 11 बड़े पुल 121 छोटे पुल 54 रोड अंडरब्रिज आधुनिक सिग्नलिंग अते दूरसंचार प्रणाली ते भारत दी स्वदेशी ट्रेन टक्कर रोकू प्रणाली कवच शामिल है। श्री बिट्टू ने भी कहा कि रेल लाइन सिर्फ खेतरी संपर्क नूं ही मजबूत नहीं करेगी सगों हंगामी स्थितियां विच अमृतसर पठानकोट रेल सैक्शन के बदलवे रूट वजों भी काम करेगी जिस नाल उत्तरी भारत विच रेलवे संचालन होर मजबूत अते भरोसेयोग बनेगा। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNews जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टरां खिलाफ मुहिम तहत एक वड्डी कामयाबी हासिल करदिया अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई दौरान पुलिस ने 8 मुलजमान गिरफ्तार करके उन्होंने कब्जे विचों 11 आधुनिक पिस्तौल ते 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए ने। इस बारे जानकारी देंदिया पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह पुलर ने मीडिया नूं दस्सिया कि ए एक बहुत ही सुचज्जा अते इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन सी। उन्हां कहा कि बरामद किए गए हथियार गैंगस्टर कॉपी बराड दे नेटवर्क नाल जुड़ी एक वड्डी खेप दा हिस्सा सन जो अंतरराष्ट्रीय सरहद राहीं पंजाब विच पहुंचाई गई सी। उन्हां कहा कि समय सिर कीती गई कारवाई कारण कई संभावित अपराधक वारदातां नूं टालन विच कामयाबी मिली है।
2: 11 सोफिस्टिकेटेड वेपन फड़े ने जो कि एक फॉरेन बेस्ड हैंडलर हैगा कोपी बराड पिछो रमदास एरिया दा रहण वाला और सस्पेक्टेड हैगा कि पोर्चुगल दे विच है। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆ ਵੈਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ।
1: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 420ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ FIH ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

0: आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
1: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा

0: ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो

0: चुकी है, कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट They also retain their unique identity.
0: Thank you so much, sir.
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government.

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं आप शारद प्रोग्राम च फरीदा खानम की आवाज़ से खूबसूरत गजल।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया।

0: प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की, रचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva

0: Country White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए की कुल

0: बजट के परिवेश से शुरू किया गया है और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस के तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
1: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़ें कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
0: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें इस योजना के स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है
1: कि 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स
0: फ्री किया था। बिल्कुल।
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जुड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भागना पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है।
0: बिल्कुल। जुड़ रही आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
0: जी, अपना अनुभव आपको किस तरह के बारे काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का मिला है?
2: तो सबसे पहले बात करें तो कम या फ्रेशर्स जो होता है जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है उन्हें हायर करिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं एक फ्रेशर हूं, मैं इंजीनियरिंग करा हूं, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूं। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जाती

0: जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,000। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है वो, कि कॉरपोरेट में गए हैं जो एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में मैं इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी, आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा और कि इस योजना के तहत और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए। हाँ
2: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000 90,000 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूँगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका। अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
3: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ दी को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ दी प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो एआई के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, दी प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर, मोस्ट ऑफ देम। आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ दी वन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स दी यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
1: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए?
3: जी। सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट

0: actually encourages companies to create more job, and it encourages young professional to enter into the formal workforce with confidence. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है, तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउसहोल्ड एंड एवरी हाउसहोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कॉन्ट्रीब्यूट।
1: आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं, लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो
1: बिल्कुल
2: जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से दिखाया और लेकर के आ गए। यही ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल
2: जी
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का
2: जी
1: एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े, और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: कंट्री वाइड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरिस विच वीवा टैक सम्मेलन नूं संबोधन किया। श्री मोदी ने कई प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियां नाल भी मुलाकात की। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐतवार नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या दीआं तैयारियां दा मुलांकण करन लई अज एक उच्च पदरी समीख्या मीटिंग की प्रधानगी की। मौजूदा वित्तीय साल विच अनुसूचित जातां दे विद्यार्थियों नूं स्कॉलरशिप लाभ प्रदान करन विच महत्वपूर्ण वाधा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार वित्तीय साल 2026-27 विच 26,000

साधना सरगम दी आवाज़ ते सुन रहे सी एक खूबसूरत गीत तेरे दर पर सनम चले आए। अगला गीत सुनते हैं आवाज़ देती है आशा भोसले ने, गीत दे बोलने मैं शायद तुम्हारे लिए।

कुमार सानू दी आवाज़ च सुन रहे सी परदेस मूवी चो ये गीत दो दिल मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुनते हैं आशा भोसले ते किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच ये वादा रहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री

समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, ऐसी एक नज़र अपने व्हाट्सएप मैसेजेस वाली मार लेने, क्योंकि लगातार टिंग टिंग टिंग टिंग करके साढ़े को मैसेजेस जड़े ने पहुँच रहे हैं जी। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो, भेजा है ताज मुहम्मद अंसारी साहब ने, इन्होंने नाले जी गुलाम साबिर राही ते महराज चाहा। सो बिल्कुल ठीक है जी, ते अगला मैसेज कितों आया आप भी देखते हैं। अगला मैसेज आया जी साढ़े को, सत श्री अकाल जी, बठिंडा तो मैसेज भेजा इन्होंने। सो बहुत प्यारी सत श्री अकाल भेजिए जी, साढ़े वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल। और मैसेज भेजा साढ़े ताई रविंदर सिंह जी ने, इन्हों के नाल ने गगनदीप कौर, जसमीन कौर, गुरलीन कौर, शिंदरपाल। तो मैसेज एक होर पहुँच गया जी, इन्हू भी आप शामिल कर लेंगे। ये मैसेज आया साढ़े ताई सरहिंदी बाजार पटियाला तो, भेजा है प्रेम कुमार रहेजा जी ने, इन्हों के नाल ने कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योत, सजनी। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत हरजीत हरमन साहब की आवाज़ में।

बिल्कुल जी सज्जना, मैं तेन तक तक नहीं रचना की जगह गुरदास मान साहब की आवाज़ से भी प्रोग्राम चल रहा जी। सौगात तो मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल बनया होया और साढ़े तीन मैसेज पहुँचे जी वट्सएप से अगले दोस्त का। और मैसेज आया साढ़े को पिंड लौंगोवाल जिला संगरूर तो भेजे है अजैब सिंह चौहान जी ने। इन्होंने नाल जी अवतार सिंह, जसविंदर सिंह,

बिल्कुल जी जी आप दो मेरे से बैठे तो बनाओ कौन गीतन जगारे से हंस रहे हंस साहब की आवाज़ से बैठे प्रोग्राम चला जी सौगात ते अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी। महज गेट नाभा तो भेजा है सोमदत्त जी ने इन्हों के नाल ले जी कैरव ते ज्योति राणी और ते गुरमन्नत और ये सरदूल सिकंदर साहब की आवाज़ इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश से सुनते हैं पैरा चा गीत।

बिल्कुल जी नहीं, मेरी आँख काश नहीं गीत जगह सुरेंद्र कौर जी की आवाज़ से भी प्रोग्राम सारे जी सौगात है। मैं थोड़ा दोस्तों ने सुने थोड़े नाल पढ़िया होया। सो साढ़े को मैसेज पहुँचा है जी मंडी कलां वाली तो रवि कौशिक जी का, और इन्होंने नाले जी रमेश कोठारी जी और नछत्र गिल साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की थी है। सो बिल्कुल जी, इन्हों की फरमाइश आप जरूर पूरी करांगे। और इस दे नाल एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी, मैसेज आया साढ़े को बठिंडा रोड मंडी डब वाली तो भेजा है राजेंद्र नारंग जी ने। इन्हों के नाल ने अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, मैसेज आया साढ़े को वड़िंगखेड़ा पंजाब तो भेजा है मिंटू टॉमस जी ने। इन्हों के नाल जी पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश तो सुनते हैं पैरा जी गीत छत्रगिल साहब की आवाज़ में।

दीन दुनिया तेरी टेक, सब महरविया साहिब एक। अकाल पुरख न्योटियां दी ओट, नितरियां दी तिर, न्यासरियां दा आसरा है। टेक, आसरा, पना, ए समान अर्थी शब्द हन, पर ए सच है कि टेक, आसरा, ओट, शरण उसे दी लुड़ींदी है जो अपने आप तो ताकतवर है, समर्था वाला है। तांते फिर अकाल पुरख प्रभु अग्गे दीना वांगू बेनती करनी चाहिदी है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन माने, जन काओ पूरन दी जाए। सरवण करदे आं भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन का पूरन दी जाए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु दा ओट आसरा टेक शरण कल्याणकारी है। प्रभु दे चरण शरण विच किसे प्रकार दा दुख नहीं व्यापदा। ऐसे नाम दी प्राप्ति हुंदी है जिसनु जपिया अकाल पुरख प्रभु किरपा करके अपने प्यारियां दी बांह फड़के उन्हानु पव सागर तो पार कर दिंदा है। राग तनासरी विच गुर फरमान है, हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो कृपा करता रहो, पूजा गह कूप ते काड लेवो। सरवण करदे आं भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभता रहो कृपा करता रहो, पूजा गहकूप ते काड लेवो। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, कर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारू कृपा कर तारू, पूजा गह कूप ते काड लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन न राखण हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारणा जी जंत तारणा, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वशल नानक गायो। विचार अधीन शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों तनासरी राग विच उचारण कीता होया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 683 उपर सुशोभित है।

सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मागन कौ हर दान। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बिचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन।

अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या देव दृष्ट कारण कारणं सत गुर गुर सेव अलख

निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर थायात बड, सो पर सदा सब विदरत नागर, संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल जुग दुरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु।

हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। घट घट रब रहया बनबारी, जल थल मही अल गुप्त वरत, गुर शब्दी देख निहारी जियो। रहा मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सतगुर किर

ब्रह्म अजोनी हैपी होनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। जन्म मरण को इहो जग बपुड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो। सतगुर मिले ता गुरमत पाई है, साकत बाजी हारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्भ मंझारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन बसिया निरंकारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्भ मंझारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर

0: दयाल कृपा करे ता सही कार्य कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी, हुक्म मन्या होगा प्रभा ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो कर मन चिंदिया सो पल पाए सी, ता दरगह पंदा जाए सी, ता दरगह पंदा जाए सी।
1: राम कली महला तीजा अनंत

बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे के सांस वासा नाल निभाही।

सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो

मानस खाने करे निवास, शुरी गंत नलताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, ओना फे आवे ओही साध, कुड़ी रास कूड़ा वापा, कूड़ बोल करे आहा, शर्म तर्म काड़े राधूर, नानक कूड़ रहा परपूर, मथै तिका तेर तो तिका खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील बस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश ताले पुजे प्राण, अपाख्या का कुठा बखरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देख चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कुड़िया, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन साडा फिट।